राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस ते जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ग संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

जिनू गुरु कलगी दर पातशाह ने वो बख्शिश कीती के आ जिथे भाई करैया तू पानी पिलाउना आ मलम भी फटा दे ला दिया आ सिख दा प्यार है आ सिख दी भावना है जिसनू बगाने भी अपने लगते हैं।

रोंदे नूं नहीं थक सकदा। जिहड़ा गुरु दा सिख है बांह फड़ लैंदा, अपने शरीर ते भावें दुख सहना पै जावे, शरीर ते कष्ट जर सकदा है, पर दुखीए दा दुख निवृत्त कर दिंदा। भाई कमलीए वर्गा राजे दा वजीर वजीर खां कोड़ी हो गया, ऐसा दुख लग गया, राजे ने भी शहर तो बाहर कढ दिता है, पर भाई कमलिया बंदगी करन वाला नाम जपण वाला सुखमनी साहब दा पाठ करदा जांदा। वजीर खां दे कन्नां विच जदों बाणी पई तन मन ठंडा होया, आवाज मारी ओ सिखा अकीदी कलाम पढ़दा, आ बाणी सुनदिया मेरा तन मन ठंडा हो गया। ते भाई कमलिया परपकारी कोल बह के सुखमनी साहब का पाठ सुनाया, फिर इथों तक अपने मोढ़िया ते चुक के गुरु अर्जन देव पातशाह दे दरबार में लिया के दुख दूर कर दिता। भाई कमलिए ने ऐसा परपकारी ओ कोड़ी वजीर खां वर्गे जिन्हां दा शरीर कंचन वर्गा कर दिता, फड़ लई बां दुख दूर कर दिता। पर आओ भाई सिखां दा तां प्यार ही इहो जिहा, भावना ही इहो जी, हिरदे विच परपकार दा बीज बोया हुंदा, इस वास्ते बां फड़ लईए। दुखियां दा दुख नहीं हो जरदे, रुड़दे जांदे दी बां फड़दे, पर मुख तो सत नाम जप के वाहिगुरू वाहिगुरू कह के फिर भी मन नीवा मत उची आओ वही सिखा का। पर जिहड़ा सिख बन जावे भेखी सिख नहीं, विखावे वाला सिख नहीं, जिहड़ा अथिक अंदरों सिख है, जिहदे हिरदे विचों प्यार है, बस वह प्रगट ही नहीं करता, वो तो कहिंदा ही नहीं, वो तो कहिंदा मैं अजे सिख बनिया ही नहीं, क्योंकि गुरु का मार्ग ही ऐसा है, गुरु के पाए हुए पूरनिया ते जिहड़ा सिख चलता है, बस वो तो मन नीवा मत उची, कि जिन्हां ते गुरु बख्शिश कर दे।

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना, ये पूर्ण सिख दी निशानी, ये पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे, आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए, तन मन धन दा माण।

भाई मंद जी राज भुल गए, जिस राह तो गए सन वो राज भुल गए। तुरिया आउंदिया एक पुराना खूह, जिस खूह दे बनेरा भी कोई नहीं। भाई मंझ जी तुरे आउंदे ने रब दे रंग विच, उस प्यारे दे गीत गाउंदिया गाउंदिया बरसात जोर दी। पर जदों भाई मंझ जी उथों दी लंघण लगे पुराना खूह, भाई मंझ जी खूह विच डिग पए। अपने आप नूं संभालिया, लकड़ां नूं बोचिया, लकड़ां किते डिग ना पए। पर इकदम खूह विच डिगे परिदर साहब धन गुरु अर्जुन देव पातशाह, कीर्तन दा आनंद माणदिआं इकदम संघासन तो हिले। भाई गुरदास जी नूं कहण लगे, भाई गुरदास मेरा प्यार वाला सिख भाई मंझ डिग पई। जानी जान सतगुरु संघासन तो उठे, सिखां नूं नाल लिया, कुछ रस्से नाल लै ले, अज उस थां ते आ पहुंचे जिथे भाई मंझ खूह विच खलोता, सिर ते लगणा है। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह आए, भाई मंझ नूं तकिया ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा मन भर गया, नेत्रां विचों जल विया। ते भाई गुरदास वल तक के कहण लगे, ओ भाई गुरदास तके आ मेरे प्यार वाले, जिन्हां दा मन नीवा निम्रता ते प्यार दे विच रहण वाले। लकड़ां नहीं डिगण दित्तियां, सिर ते लकड़ा चुकियां, भाई मंझ खड़ोते। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह ने उपरों प्यार नाल इक बोल बोलिया, ओ सिखा आ लकड़ा सुट दे।

सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच।

तीर्थ नावां जे तिस पावां बिन भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखां बिन कर्मां के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणक जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जियां का इक दाता सो मैं विसर न जाई।

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार असंख मौन लिवलाए तार कुदरत

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादी।

गावह तुहनो पौन पणी बैसंतर, गावह राजा धर्म दुआरे, गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावह इंद इंदासन बैठे देव त्या दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मनमोहन सुरगा मछ पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिवत सिदी वडियाई, ज्योतिष पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत, आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग

एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस पावे तिवै चलावै जिव होवै फरमान। ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडान। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश।

हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुगत सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं, सदैव अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओंगाद रूपे अनादि स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं, कि नरकं प्रणास हैं, पृथ्वील प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विभुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद अपंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अभूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सो नित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट शंता प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शंता प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं श्रीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शंत प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुस्नल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी दहिंद हैं के राज कर हिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुस्नल जमाल हैं गनीमुल खराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तल निवास हैं अगंजल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तल जुबां हैं कि साहिब की राह हैं कि नरकं प्रणास हैं बहिस्तल निवास हैं कि सर्वल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तल अजीज हैं परम परम ईश हैं समस्तल अदीश हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमा

माल हैं कि जुरत जमाल हैं, कि अचलंग प्रकाश हैं, कि मित्तो सुबास हैं, कि अजब स्वरूप हैं, कि मित्तो विभूत हैं, कि मित्तो पसा हैं, कि आत्म प्रभा हैं, कि अचलंग अनंग हैं, कि मित्तो अपंग हैं, मद पार शंत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव नास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन भंग उपमा पारगत मितोदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तिर तर तुरास अजान वाहो एक सदा हो ओ अंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनझंझ गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अत तीठ कर्म अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तब प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्वोबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विसंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है अजबा कृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विसंबर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पवपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है आकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तुल परणामे समस्तुल परणासे अगंजल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते एक रति विन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहां पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजित ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे
श्रीपद श्री भगवान भजे विन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचकन एक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराद पजौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत पसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं भगते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुन्द्र लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाह को शीस निवायो को मृतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को मृतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई बहुर असुर का काठ समाथा श्री असकेत जगत के नाथा द्वितीय बान सौंदो अर कर काठ दयो अस्तुज नर नाहर पुनराशिष का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सभ न्यान बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा खल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो बारे कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावहो आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिये सब बैरन को आज संघरिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सुतुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारी है आप हाथ दय मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजू करिय हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बध कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
जब उद करख करा करतारा परज तर तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब हीते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम।

जानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरणत भिन्न भिन्न तुहि तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो शंकरे कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप सुजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज अवसरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट तरह तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहिर हो ताके ताप तन कुमो हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शासव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांश्त फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतरता आवई। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो यहाँ की एक बार चौपई को कहे। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो यहाँ की एक बार चौपई को कहे। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया। शब्दों ता गाव हो हरि के रा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारणा। सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनोह विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाहीं कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सालाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विष्टह जिस दिया ये विडियाइया। कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कलां जित घर धारियां पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया। एस नो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बाजहु क्या करे विचारिया। आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाण्या जाण्या आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलविह कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जाण्या। बाबा जिस तू देह सोई जन पावे पावे ता सो जन देह जिसनो होर क्या करह विचारिया एक भरम भूले फिरह दह दिस एक नाम लाग सवारिया। गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे।
आवहो संत प्यारे हो अकथ की करहै कहानी, करहै कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईए। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्ने पाईए। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावहो सच्ची बाणी, कहे नानक सुनो संतो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतराई किने न पाया, चतराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिन एत भरम पलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसे विटहो जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतराई किने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एह कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले। साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है, ऐसा कम मूले ना कीचे जित अंत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम गोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है, आखें ता देखें सब तू है जिन जग तू पाया। कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया। सुर नर मुनजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद पाए एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी बालहु निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तज हर बासना समाणी, कहे नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए है तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए है तिवै चलह जिना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाए है से हर हर सदा त्यावहे। जिसनों कथा सुनाए है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे, कहे नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवै चलावहे। यह सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसया जिन तुरहों लिखिया आया, एक फिरह कनेरे करह गलां गली किने ना पाया। कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया, पवित होए सेजना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत सवाइया, कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजय बिन सहजय, सहसा न जाए नह जाए सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए। सहसह जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन तो वहो शब्द लाग हो हर स्यो रहो हो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजय एह सहसा इव जाए। जियो मैले बहरो निर्मल, बहरो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। एह तिसना वड़ा रोग लगा मरण मनो विसारिया, बेदा मह नाम उत्तम सो सुनह नाही फिरै ज्यो बेता लिया। कहे नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बहरो निर्मल, बहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी। कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे हैं गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतरात्मे समाले, आप छड सदा रहे परणे गुर बिन अवर न जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए, जे को गुरते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे। पावे मुक्त न होर थे कोई, पुछो बबेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवह सिख सतगुरु के प्यारे हो गावह सच्ची बाणी, बाणी ता गावह गुरु केरी बाणिया सिर बाणी।
ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸੁਮਾਣੀ, ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਹੁ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿੱਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹ ਹੋਆ ਸਮਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੈ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੋਂ ਅੰਦਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਵਡ ਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਸਨੋ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸਨੋ ਆਪਣੀ ਲਿਵਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵਾਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਕਹੈ ਨਾਨਕੇ ਏਵਡ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਬੀਸਰੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਕੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ, ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ, ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਰ

Vahe Guru.

सेवा लैण कोई संगत नवी आई हुंदी है, केवल बोल के चारे विशेषताइयां लंघदे आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली विशेषता ही धरती ते जिन्ने अवतार आए

पंजवी विशेषता ही श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल तुसी साध संगत जी गल्लां भी कर सकते, कई रान हो जाएंगे।

तू किहो जिहा मजदूर है। सारे रस्ते गुरु दियां गल्लां सुणांदा आया ते पैसा भी कोई नहीं दे लिया। भई तेरे वर्गा चंगा बंदा कदों जिंदगी विच मिलदा है। आ इंज ना जा बाबा आख रिहा है, इंज ना जा सवेरे सतगुरां दे दर्शन करके जावी, सवेरे दीवान लगना है। मेरे मालक दीवान विच आउणगे ते सतगुरां दे दर्शन करके जावी। इस नौजवान ने आखिया बाबा हुण मैं जावां, दे तू आखदा है मैं सवेरे फिर आ जावां। बाबे ने आखिया इंज करी दीवान विच आ जावी ते इकट्ठे ही सतगुरां दे दर्शन करांगे। चंगा बाबा मैं तैनू सवेरे दीवान विच मिलांगा। ते सतसंगियो सवेर होई है, दीवान सजिया है, तन गुरु अर्जन दे पातशाह तख्त ते बैठे ने, ते बहुत सारियां गुरसिख संगतां नमस्कार करन वास्ते खलोतियां ने। लंबी लाइन लगी हुई है ते बिच बाबा भी नमस्कार करन वास्ते खलोता है। बारी आई जदों इस बजुर्ग बाबे ने सतगुरां दे चरणां ते नमस्कार करके सतगुरां दे चेहरे वल तकिया ते तबक के औ परे जा डिग गया। सतगुरु बोले, बाबा की होया जे? बाबे दा शरीर कंबण लग पिया, मुख दे विचों बोलिया नहीं जा रहा। सतगुरां ने आखिया, बाबा की होया जे? हाथ जोड़ के आखन लगा, सतगुरु एक गल दसो, कोई इहो जिहा मजदूर भी अमृतसर दे विच रहिंदा है जिहदी शकल तुहाडे नाल मिलदी होवे? सतगुरु आखण लगे, भी मैं ते कोई इहो जिहा देखिया नहीं। नहीं सतगुरु, जरूर कोई इहो जिहा रहिंदा है जिहदी शकल तुहाडे नाल मिलदी है। सच्चण अज सतगुरु अपने आसन तो उठ के आए ते बाबे नूं घुट के वाहवां दे विच लिया। बाबा मैं तेरी गल जान गया हां, तू की कहना चाहुंदा? कल मैं ही तेरा समान अपने सिर ते चुक के लियाया सी। जदों सतगुरां ने इनी गल आखी ना, बाबे कोलों सुनी ना गई, अखां विचों हंजू किर आए, रो के आखिया, सतगुरु मैं किड्डा गुनाहगार हां, तुहाडियां बख्शां लैण वास्ते आया सी, तुहाडियां रहमतां लैण वास्ते आया सी, तुहानूं ही समान चुक के लियाया, तुहाडे सिर ते भार चुका के लियाया, मैं किड्डा गुनाहगार। जदों बाबे ने इनियां गल्लां आखियां ते सतगुरु आखण लगे, नहीं बाबा इंज क्यों करदा है? जिहड़े इस दरबार वल नूं आउंदे ने उन्हां दी मजदूरी मैनूं करनी पैंदी है। अज बाबे दियां झोलियां प्रेमत नाल भर गईयां, बाबा खुशी दे विच फूलिया नहीं समाउंदा, अपने घर नूं वापस आ रहा है, असंगत दे जथे जा रहे ने, रोक रोक के सतगुरां दी उपमा कर रहा है। अमृतसर वल जांदे राइयो जाना गुरुद्वारे दे, भाई तू किथे चला है? अमृतसर चला है। हरिमंदर दे दर्शन करके टुट जांदे दुख सारे दे, सतगुरां दे घर जरूर जाई तेरे सारे दुख ते कलेश कट जाणगे। अज बाबे दी झोली

रंग न लाए, संता से भी रंग न लाए, साकत संग विकर्म साकत संग विकर्म कमाए। दुर्लभ देह कोई अज्ञानी उज्जड़ अपनी

کل آئیے تے جگ کیڑا رہا تپاوس جے کن دے تا پائیے کل کل والی سڑا

ਦਿਨ ਸੰਜਮ ਜਤ ਦਿਨ ਕਾਹੇ ਜਨੇਊ ਨਾ ਵੋ ਧੋਵੋ ਤਿਲਕ ਚੜਾਵੋ ਸੁੱਚ ਦਿਨ

gasoline. काहे दिल है ये शब्द गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने मथुरा वृंदावन जदों आप गए ते जाके वेख्या भाई किवें ये पंडित लोग राशां पाउंदे हैं कोई कृष्ण भगवान बनता है कोई ते उना दे नाल ही फिर कुकर्म करदे हैं ते हजूर ने ये शब्द उत्थे उच्चारण किया पर है कहनी प्रधान ने क्योंकि अगे करनी कीरत वाची ऐसा ना हो अगर उपदेश है आप न करे आवत जावत जन्मे मरे लोगों नु रोकता रहे भाई शराब न पिया करो ते आप पीता होवे लोगों नु कवे कुकर्म ना करया करो आप करता होवे हजूर कहते ऐसा मनुख कदे अपना जीवन सफल नहीं कर सकता अपने मनोरथ विच कदे कामयाब नहीं हो सकता उच्चारण करो श्री वाहिगुरु वो फिर क्या सिकटारा पवे जंगीरी तो चाकर हथों मरना सुली मारिया गया सी ना कितने अहंकार नाल फौजा लैके आ रहे गुरु अर्जन देव पातशाह जी मारन ले गुरु नानक के दर के नाल शुरू तो ही क्योंकि इतने हिंदू मुसलमान किसी भी मत का जो भी आंदा है उसनू रहन लई खां मिलती है शकन लई लंगर मिलता है ते फिर सिर्फ शरीरक लंगर ही नहीं बाबे दे घर कीर्तन का भी लंगर चलता है घर कीर्तन होए उधार ते जदों कीर्तन का लंगर छक के उठता है मनुख ते फिर कड़ा प्रसाद की देख दिल मिल जाती है उच्चारण करो तेरी भाई ते गुरु नानक के दर की दिनों दिन वध्याई ये झूठी सता वाले कभी भी नहीं सह सके हम भी थां थां ते जितनी भी धरती है सारे वर्ल्ड में जिथे कोई एक भी सिख बैठा है ना सात संगत उसने गुरुद्वारा पहला बनाया है अपना घर बाद में बनाया है उच्चारण करो श्री भाई ये गुरसिखा भी ऐसे ही आए और हर गुरुद्वारे में फिर गुरु का लंगर कीर्तन ते आए स्थिति नूं थां मिलती इस दर की वडियाई नूं जहांगीर वेख नहीं सकिया ते सुली खान नूं कह दिता भाई तू कश्मीर जा रहे हैं जंग करन लई रस्ते विच गुरु नूं नहीं सोधदा जावे ते जदों हजूर दे पास इह सुनेहा पहुंचिया विचार होई प्रथमे मता जे पत्री चलावो दुतीये मता दोए मानक पहुंचावो किसी ने आख्या महाराज पत्रिका लिख दई ते जे बादशाह जहांगीर नूं पत्रिका नहीं लिखनी तां दो सियाणे पुरश भेज दईए जो गुरु नानक दे दर दी वडियाई दस सकन ते जे ए वी नहीं करना तां फिर हुकम करो असीं जूझ जांदे हां तृतीय मता किश करो उपाया और शांत मुहूर्त गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुज बाणी दे बोहित शहीदों के सिरताज दाता जी जुड़ गए अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में ते आप कहते हो मैं सब किश छोड़ एक बार जपो ना मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही दे आया आख्या मैं इन्हों कपटियां जाके कह भाई मैनू कुछ ना आख ये दुनियादार राजेशी मुकदम कुत्ते इन्हों जाके आखा नहीं मैं अपने परमेसर अगे अरदास करनी है जिन्होंने परमेसर का आसरा लिया ना इतिहास में आंदा है भाई सुली खां बड़े हंकार नाल फौजा चढ़ा के आ रहा सी इसका घोड़ा ऐसा पागल होया बंदे पठे विच जा बढ़िया ते सुली समेत सुहा हो गया सुली ते नारायण राख सुन ही का हाथ कहीं ना पहुंचे सुन ही होए हुआ ना पाक मुसलमान सर के मर जावे ना कहते ना ये दोजख विच गया नरका विच गया काज कुठार खसम से काटिया काज कुठार खसम से काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचिया याद रखना गुरु नानक दे दारू गुरु नानक के दर लई जिसने मंदा चितवया ना सात संगत वो कदे रहा नहीं है वो जड़ों उखड़ गया
ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਬੀਨਾ ਤਾਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਧਨ ਕਛੂ ਨ ਰਹੇ ਉਸ ਛੋਦ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਸਿੱਖਦਾਰ ਹੈ ਪਵੇ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾਂ ਜਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ

बाहर निकली निकली भटियन में पटलौन पा के इशारे देता गया। मनुखता जल्दी रोई पर किसी ने दया नहीं की। पत्थर दे पुजारी सन पत्थर हो चुके सन, पत्थर दे अखा में कदी आंसू नहीं आंदा सावन, पावे सारा जगत का ही खून बह जाए। पुजारन करो गिरी वाले, सारी प्रकृति तो रो रही होगी, कुदरत रो रही होगी। जदों बेगुनाह मारिया जा रहा सी, पर ए पत्थर पत्थर दिन इंसान इन्हों की अखा में आंसू नहीं आए। उजारन करो गिरी वाले, एक नहीं सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। आ दुनिया से राज करने वाले आ, जे तेरी हाथ में कलम है तो तेरे पीछे भी कोई खड़ोता है। जे तू रहम की कलम वाहेगा तेरे पे भी वो रहम की कलम वाहेगा, ते जे तू जुलम की कलम वाहेगा तो तेरे पीछे भी कोई खड़ोता है। इसलिए जहां सिकदार है पवे जंजीरी, चाकर दत्तों मरना।

राष्ट्रपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन उहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरा चले जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिन माए उतारी अनक पुने चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख घनेरे सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आकावै जय मार्ग इहो जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ते आये नानक गुरुमुख प्रमगत पाईए छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तै पार पराही अनक बिघन जे आए संकारै हर का नाम तत्काल उतारै अनक जोन जन्मै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हो मैला मल कबू न तोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईए साध के संग जय मार्ग के गने जाहे न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जय पैड़े महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महा प्यान तपत वो काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहां तिरखा मन तुझे आकर खै तै नानक हर हर अमृत बरख भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जनकोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औगद साध कमात हर जन के हर नाम नितान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न पंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे ब्योग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजा हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर तन जन को आप प्रभु दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बो करे नानक जन संग केते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत नित वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विड़ पागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है।

की पवित्र वाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इना सारे सलोकां विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरा। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होंदा, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण ता भी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदिया भी देर नहीं लगती, जांदिया भी देर नहीं लगती। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु का धन्यवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़ता है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? इह ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिस दा नाम सी। इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां। ए पलिया, तेनू धन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भुलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्यवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है वह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नूं भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधीए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बनाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भी किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ।

ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ।

जिन्होंने बाणी नू कुछ समझिया है, कीर्तन कर रहे सन इस तो पहला ते पढ़ रहे सन, धन धन गुरु जिन नाम अरातिया, आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए, सवाल कीता बाणी की है अजे तक समझ नहीं आई, बड़ी बार कीर्तन सुने बड़ी बार कीर्तन कीता पर अजे तक बाणी दा नहीं पता लगा कि बाणी की है। हुण किहदे कोल पुछिए बाणी की है, ते सात संगत कई कई गुरसिख कई बीबियां जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पाठ करदियां ने ते जदों पाठ करन तों बाद जितने सफे हो जान कई लोग कागजां दियां निशानियां रख देंदे ने, ते जिसने कदे प्रतख गुरु की देह समझिया होवे साडी अख च कोई एक तीला चला जाए ते सानू सारी रात नींद नहीं आउंदी। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। सवाल कीता ए बाणी की है, जिसनू बाणी दा पता है उसने कलम चुकी ते लिखना शुरू कीता। सानू एक सनेहा दिता बाणी पढ़न वाले हो ए बाणी की है, साडी नजर ते सिर्फ इथों तक पहुंची है कि ए अखर ने ए सफे ने जिन्हां नू असी वरके कहने हां, जिन्हां नू असी पत्रे कहने।

इंद्रदेव से ने हरनाक्ष जी करवाली क्या तूने नारद मुनि दे हवाले कर देता क्या तूने नाल लेके नारद मुनि अपने आश्रम आ गए आश्रम भी ओ जिते हर वक्त

अपना दुख भुल गई, सारा समा परमेश्वर का नाम जप के बतान लगी। ये जो नाम जपदी है परमेश्वर दिया कथा कहानियां सुन दी है, ओदा असर एदे गर्भ विच है, पोस्ते हो रहे है। क्योंकि कहंदे ने जो मां खावे ओदा असर बच्चे ते हुंदा है, ते जैसी मां दी बिरती होवे जहो जा सुने ओहो जा असर होण वाले बच्चे ते हुंदा है। हुण ए नाम जपदी नाम सुनदी है, उस नाम दा असर

बड़ा उग्र कठिन तप कीता। दूसरे पासे नारद मुनि दे आश्रम क्यादो ने एक बच्चे नु जन्म देता, जिस बच्चे दा नाम प्रहलाद रखिया गया, जिस नु आपा सारे प्रहलाद भगत करके याद करते हैं। उधर हरनाकश की तपस्या पूरी हुई, भगवान ने प्रत्यक्ष प्रगट होके

मैनू ए वर दे कि मैं मरा ना। भगवान ने कहा कोई चंगा वार मंग, ए वार मंग के तू दुनिया च जुलम करेगा। अक्सर हुंदा है कि जदों किसी कोई ताकत आ जावे वो पला कट करता है, जुलम ज्यादा करता है, पर जड़ा जुलम करता है उदा अंत बहुत माड़ा हुंदा है। भगवान ने कहा ऐ हरनाकश चंगा वर मंग जिद नाल दुनिया दा भला होवे। हरनाकश कहन लगा भगवान वर देना है ता एहो ही दे कि मैं मरा ना, मैनू होर कोई वार नहीं चाहिए। तो जिन्नी क बंदगी इंसान करदा है उतनी शक्ति परमेश्वर उस नू दिंदा है। कहन लगे चंगा तेरी भगती दे वस हां, जो तू मंगेगा मैं तेनू देंगा, पर एक गल है चंगी मंग दा फल चंगा हुंदा है, माड़ी मंग दा फल माड़ा हुंदा है। हरनाकश ने मंगया ना मैं देने मरा, ना रात मरा, ना पानी विच मरा, ना सुके ते मरा, ना धरती ते मरा, ना आकाश विच मरा, दुनिया दा कोई भी हथियार मैनू मार ना सके, ना मैं आदमी कोलू मरा, ना मैं किसे जानवर कोलू मरा, ना किसे औरत कोलू मरा। सारे बार ले ले भगवान ने कहा चंगा भाई भगती तो कीती सी ते जैसा कोई वर मंगे मैनू देना पैंदा है, ए वर तेनू दिता। हरनाकश बड़ा खुश होया हुण मैं मर नहीं सकदा, मैं जो चाहवा वो करांगा। हरनाकश वापस अपनी राजधानी आया, राजधानी उजड़ी देखी बड़ा गुस्सा चढ़िया, बची हुई सेना इकट्ठी कीती। पता लग गया कि मेरी राजधानी इंद्र देवते ने उजाड़ी है, बड़ा गुस्सा चढ़िया। कुछ देर बाद नारद मुनि हरनाकश जी घरवाली क्या दो ते प्रहलाद भगत नू लेके उत्थे हाजिर होए। नारद मुनि नू हरनाकश ने नमस्कार कीती। नारद मुनि कहन लगे हरनाकश ऐ तेरी अमानत, ऐ तेरी घरवाली, ऐ तेरा लड़का, इन्हां नू सांभ लै ता कि असी अपने आश्रम वापस जाइए। हरनाकश बड़ा खुश होया अपनी घरवाली नू मिलके अपने

देवते ते चढ़ाई करन दी ते पहला इंद्र को नु बदला लवा ते बाकियां दे नाल फेर लड़ांगा। ते लड़ाई दी तैयारी कर रहे है।

पैदा होया है वो मेरा भगत है। प्रहलाद ने अपने पिता का नाम जपना नहीं, एक घर विच लड़ाई शुरू हो जानी ते हौली हौली ऐसे घर की लड़ाई ने हरनाक्ष का नाश करा देना है ते दुनिया नू हरनाक्ष के मरण दे नाल ही

पढ़ाई तो पहला जेड़ा जरूरी सबक है वो तुसा सारे ने लिखना है ते बोलना है। सारे बच्चों नु कहा अपनी पट्टियां ते लिखो ते बोलो जले हरनाकश फले हरनाकश। हरनाकश ही रब है, हरनाकश ही भगवान है। ता उस वक्त जो प्रहलाद ने कहा कबीर साहब ने

पिता छोटी उम्र है। पिता वाल देखे जिदे चेहरे ते बड़ा गुस्सा है, देखे प्रहलाद मेरा नाम जप।

प्रहलाद नू पानी विच डोब के मार दियो। सिपाहियां ने प्रहलाद नू फड़िया, हाथ पैर बन के उच्ची पहाड़ी ते लै गए। बड़ी डूंगी नदी जिन्हों देख के भी डर लगता सी, छोटे जे बच्चे प्रहलाद नू चुक के

कि मेरा लड़का प्रहलाद डुबिया नहीं। समझ ना आई हाले भी कि जिदी रखिया परमेश्वर करे उन्हू कौन मार सकता है। पर फिर प्रहलाद नु बुला लिया ते गुस्से नाल कहा, तू राम नाम जपना बंद कर, मेरा नाम जप, नहीं ते अग्ग च साड़ के मार देंगा।

जे तेन अपने रब से भरोसा है इस तत्ते थम जफी मार जड़ा अग की तरह सड़दा पे नाले हर नागश ने तलवार खिंच ली।

दस तेरी रक्षा करने वाला तेरा रब किथे ता प्रहलाद ने ओ जड़ा थम अग दी तरह लाल सी सड़दा पिया सी उसनु भज के जफा मार लिया। कई लोग कहंदे ने के प्रहलाद डोल गया तत्ता थम देख के ते भगवान ने कीड़ी दा रूप धार के थम ते तुरना शुरू कर दिता। पर बाणी कहंदी के प्रहलाद डोलिया नहीं क्योंकि भगत कदी डोलदे नहीं।

ना मेरे हाथ विच कोई हथियार है, जद सारे वर परमेश्वर ने गनाए ते नाले क्या देख ले, ना मैं औरत हां ना आदमी, सारे वर पूरे, अद्धा शरीर आदमी दा है, अद्धा शरीर शेर दा है। जदू हरनागश ने कहा, हां भगवान जिन्ने वर मैं मंगे सन सारे पूरे ने, परमेश्वर बड़ा बेअंत है, गुरु हमेशा चेले कोलो एक गुण वध रखदा है, की पता है चेला कदू हंकार विच आके ते मुकाबले ते बह जावे, ते जेड़ा चेला मुकाबले ते बैठे ओ चेला हो भी नहीं सकदा, ते ऐसियां दा नाश

भगत कबीर सब नाल भी होया है। हिंदुस्तान दा बादशाह सिकंदर लोधी, उसनु पता लगा कि कबीर मुसलमान है, पर मुसलमान हो के ए राम राम करता है। कुछ लोका ने कान भरे, सिकंदर लोधी ने भगत कबीर नूं

सिकंदर लोदी दे सामने हुए। सिकंदर लोदी ने कहा, ऐ कबीर तू मुसलमान है, तू सुन्नत नहीं कराई, सुन्नत करा ते राम राम छड़। कबीर साहब ने कहा, ऐ बादशाह परमेश्वर एक है, ओदे नाम कई ने, किसे नाम नाल भी उन्हों याद कर लो।

पर मैं बड़ा हैरान होया इना लोकां दी अकल ते। एक पास कहंदे ने गंगा मां है पापां दा नाश करदी, ते उसे गंगा मां विच ए मैनू

जिदे अगे हिंदुस्तान दे लोग झुकदे ने डर के ए बादशाह है। उस बादशाह नूं हाथ जोड़ के कबीर साहब दे चरणा दे मत्था टेकना पिया। उपदेश कीता है, ऐ भाई उस परमेश्वर ते भरोसा रखो जिहड़े अधर्मी ने एक वरी ते जुलम करदे ने, पर समय नाल अधर्मियां दा नास हो जांदा है ते धर्मियां दी हमेशा परमेश्वर जित करांदा है। आओ भाई आपां इस परमेश्वर दा नाम जपिए, ओदा सिमरन करिए ताकि आए हुए कष्ट दूर होन, सुखां दी प्राप्ति होवे। आओ सारे उस परमेश्वर दा नाम जपिए, नाम ना छड़िए, जे नाम छड़िया ते दुखी रवांगे, जे नाम जपांगे ते भगतां दी तरह सुखां दी प्राप्ति होवे।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या

देवदानंद छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बे।

चक चक रहे देव दानंद, चक चक व्योम विवानंद, आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे, प्रेमन एविद जो कमाओ सिंघी साच अकपट कंठला ध्या।

देव दानव छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आतम बस करके।

समुपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कब भू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

कचक रहे देवदानव मुन छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

सप्तम उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वे।

करहे देव दानंद चक चक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आनंद आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आतम बस करके भी

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

देवदानं छक छक व्योम विवानंद आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बैगो चढ़ाओ ताति गहो आतम बस करके।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

देवदानं छक छक व्योम विवानं आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

चित बंधानंग चक चक रहे देव दानंद चक चक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बे।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश वे संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

शिवानंद आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठ लागे।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कब भू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंघी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापो सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे, प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बे।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बे।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानव उन छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश वे संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बे।

आत्मोपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

चक चक रहे देव दानव चक चक व्योम विवानंग आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बे।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके भी

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बै

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्मोपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानंद, छक छक व्योम विवानंद, आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे, प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आतम बस करके भिक्षा नाम अधारंग बाजे परम तार तत हर को उपजय राग्र सारंग।

आत्म उपदेश भे संयम को जापसु अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानव छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश दे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश वे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आनंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेशम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आनंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आतम बस करके।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभव।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्या।

मभिवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म रस करके।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे, प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे, सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे। प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

देवदानों छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे। प्रेमन ए विद जो कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला

आत्म उपदेश दे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नूं जपन दा चेता करांदा है तां कहिंदा जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे हन उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इस लई जे जपना है तां फिर हुणे ही जप लै। चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेबा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करे।